0: ಇದುವರೆಗೂ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಿರಿ. ಆಕಾಶವಾಣಿ ರಾಯಚೂರು ಎಫ್ಎಂ ಕೇಂದ್ರ, ಸಮಯ 8 ಗಂಟೆಯಾಗುತ್ತಲಿದೆ. ಸಮಾಚಾರ ಪ್ರಭಾತ್, 8:15 ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ, 8:30 ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯುಷ್ವಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ.
1: ನಮಸ್ಕಾರ, ಆಕಾಶವಾಣಿ ಸೇ ಸಮಾಚಾರ ಪ್ರಭಾತ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ಮೈ ಮುಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಲ್. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए ब्रिक्स नेताओं का आभार व्यक्त किया. गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता लागू करेंगी. गणेश चतुर्थी का त्यौहार आज पूरे देश में श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है. आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है. मुंबई में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में 2025-26 के राजभाषा पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे. भारत ने ओमान तट पर व्यापारिक पोत पर हुए हमले की निंदा की. भारतीय चालक दल के 13 सदस्यों को बचाया गया. धीरज बोमा देवरा ने मैक्सिको में तीरंदाजी विश्व कप के फाइनल में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष रिकर्व तीरंदाज बनकर इतिहास रचा. और क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को 72 से हराकर रिकॉर्ड 8वीं बार महिला एशिया कप का खिताब जीता. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों के नेताओं का दिल्ली में हुए शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए आभार व्यक्त किया है. दो दिन के शिखर सम्मेलन के विशेष क्षणों को दर्शाने वाला एक वीडियो प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया है. वीडियो में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के माध्यम से भारत ने विश्व स्तर पर मित्रता, साझेदारी और सहयोग को आगे बढ़ाया है. श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा दृष्टिकोण और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा.
2: पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है. हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा.
1: शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले नेताओं में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान शामिल थे. मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी, फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर और युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलूपो सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शिखर सम्मेलन में उपस्थित थे. भारत ने 12-13 सितंबर 2026 को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिसमें समूह के 11 सदस्य देशों और 10 भागीदार देशों के नेताओं सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी भाग लिया. श्री मोदी ने शिखर सम्मेलन के दौरान अंतिम तीन दिनों में राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें भी की. गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करेंगी. मुंबई में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि कई राज्यों में यूसीसी लागू हो चुकी है और 2029 से पहले भाजपा एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में इसे लागू कर दिया जाएगा.
3: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है और मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे. भारतीय न्याय संहिता जो बनाई है इसने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भारतीय आधार देने का काम किया है और कई सारे राज्यों में सजा कराने का दर का एक ही साल में 30% वृद्धि हुआ है.
1: श्री शाह ने कहा कि 3 तलाक को समाप्त कर दिया गया है, जिससे मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार मिले हैं. राष्ट्रीय सुरक्षा पर श्री शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35A को बिना किसी विवाद के हटा दिया गया है.
3: राष्ट्रीय सुरक्षा में धारा 370 और 35A हटाना जो असंभव माना जाता था, रक्त की एक भी बूंद गिराए बगैर, एक भी गोली चलाए बगैर धारा 370 आज पास्ट बनकर खड़ी है और कश्मीर पूर्णतया भारत के साथ जुड़ा है।
1: श्री शाह ने कहा कि सरकार ने 5 दशकों से चले आ रहे नक्सलवाद को समाप्त कर दिया है और देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 14 से अधिक शांति समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक महीने के राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान की घोषणा की है। यह अभियान जन भागीदारी के माध्यम से वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को मजबूत करने के लिए 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा। मुंबई में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि यह अभियान भाजपा, एनडीए के सहयोगी दलों, स्वयंसेवी संगठनों और देश भर के नागरिकों द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस अभियान में सेवा ज्योति कलश यात्रा, वडनगर वाराणसी सेवा यात्रा, सेवा से मेरा योगदान, सेवा सेतु अभियान, सेवा चे रंग, राष्ट्र संगे और सेवा प्रथम नवाचार चुनौती शामिल है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। गृहमंत्री अमित शाह आज नवी मुंबई में हिंदी दिवस 2026 कार्यक्रम और 6वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
5: महाराष्ट्र के नवी मुंबई में गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा 2 दिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य महाराष्ट्र की समृद्ध भाषाएं, सांस्कृतिक और साहित्य परंपरा के साथ हिंदी के जीवंत संबंधों को रेखांकित करना है। उद्घाटन सत्र में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वर्ष 2025-26 के लिए राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और वरिष्ठ अधिकारी सम्मेलन में शामिल होंगे। मुंबई से की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत MTL गाइया पर कल हुए हमले की कड़ी निंदा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि अब तक चालक दल के 13 भारतीय सदस्यों को बचा लिया गया है। एक भारतीय नागरिक की तलाश जारी है। दूतावास ने कहा कि जारी खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों को बचाने में सहयोग के लिए ओमान के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। भारत ने तनाव को तत्काल कम करने और क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने की सलाह दी है। ईरान और खाड़ी देशों के बीच आज ओमान में होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई है। इसमें होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर जहाजों की आवाजाही की व्यवस्था पर चर्चा की जानी थी। ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी ने कल देर शाम इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज सलालाह में होने वाली बैठक को आम सहमति बनाने के क्रम में स्थगित किया गया है। ईरान की सरकारी मीडिया के अनुसार कुछ क्षेत्रीय देशों के अनुरोध पर ईरान और ओमान ने संयुक्त रूप से यह निर्णय लिया। यमन की सेना ने लाल सागर के तट पर ईरान समर्थित हौसी विद्रोहियों के ठिकाने पर हमले किए हैं, जबकि हौसियों ने यमन की सरकार का समर्थन कर रहे पड़ोसी देश सऊदी अरब को निशाना बनाया है। यमन की सरकार ने लाल सागर तट पर और अधिक सैनिक भेजने का फैसला किया है। पिछले सप्ताह हौसी विद्रोहियों ने महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर मोखा और बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में एक द्वीप पर कब्जा कर लिया था। पूरे देश में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। हमारी संवाददाता ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव का दर्जा दिया है।
6: गणेश चतुर्थी का त्यौहार आज पूरे महाराष्ट्र में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। घरों और मोहल्लों में भक्ति गीतों, आरती और गणपति बाप्पा मोरिया के जय घोष के बीच लोग गणपति बाप्पा का स्वागत कर रहे हैं। मुंबई में कई गणेश मंडल सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का भी आयोजन कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे और बेस्ट ने विशेष गाड़ियों की व्यवस्था की है। आकाशवाणी समाचार मुंबई।
1: उत्तर प्रदेश में भी आज से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज कजरी तीज मनाई जा रही है।
7: लखनऊ के झूलेलाल वाटिका पर भव्य गणेश उत्सव का शुभारंभ होगा। गोमती के किनारे आज से शुरू होकर 25 सितंबर तक चलने वाले इस गणेश उत्सव में 13,000 स्क्वायर फीट का वातानुकूलित वाटरप्रूफ पंडाल बनाया गया है, जहां भक्त बैठेंगे और गजानन की चिट्ठी लिखेंगे। उधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कजरी तीज पर्व आज मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं शिव पार्वती की पूजा करेंगी और निर्जला व्रत रखेंगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बाल विकास, पोषण और प्रारंभिक प्रोत्साहन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में यूनिसेफ इंडिया की विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा एस पांडे और स्वामी दयानंद अस्पताल के बाल रोग और नवजात शिशु विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता टेलीफोन नंबर 0112331 0481 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं चंद्रशेखर शर्मा।
8: भारतीय तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा विश्व कप फाइनल में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष रिकर्व खिलाड़ी बन गए हैं। मैक्सिको में कल उन्होंने जापान के नाकानिशी जूनिया को रोमांचक शूट ऑफ में हराया। क्रिकेट में भारत ने महिला एशिया कप 2026 जीत लिया है। भारत ने कल फाइनल में श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका को 184 रन का लक्ष्य दिया था। लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम निर्धारित 20 ओवर में 111 रन ही बना सकी। भारत की ओर से सैफ अली वर्मा ने 39 गेंदों में 68 रन बनाए और स्मृति मंधाना ने 39 गेंदों में 59 रन का योगदान दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय महिला टीम को एशिया कप जीतने पर बधाई दी है। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 156 रन बनाए। जवाब में भारत ने 13 ओवर और 4 गेंद में 3 विकेट पर 157 रन बनाकर जीत हासिल की। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने 32 गेंदों में 82 रन बनाए और अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए। अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
1: इसके अलावा जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने न्यूयॉर्क में अमेरिका के बेन शेल्टन को हराकर अमेरिकी ओपन पुरुष सिंगल्स का खिताब भी जीत लिया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
9: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने भारत की मेजबानी में संपन्न हुए ब्रिक्स सम्मेलन को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने ब्रिक्स नेताओं का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, जय हो दिल्ली, अब पेचिंग में मिलेंगे। सम्मेलन के समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान हिंदुस्तान में है। पत्र लिखता है, खनिजों को हथियार ना बनाए। अमर उजाला की सुर्खी है, ब्रिक्स का अब साझा लक्ष्य सर्वजन हिताय। राजस्थान पत्रिका ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट लिमिटिंग ओवरशूट के हवाले से लिखा है, ग्लोबल वार्मिंग की पहली लड़ाई हारे, दशकों तक रहेगा ज्यादा गर्मी का दौर। लोकसत्य ने स्वदेश लौटने पर विचार कर रहे लोगों पर लिखा है, पश्चिमी सपनों पर वीजा की कैंची, भारत लौट रहा टैलेंट। अमरीका, यूके, कनाडा से शुरू हुआ रिवर्स ब्रेन ड्रेन। दैनिक भास्कर ने सोशल मीडिया अटेंशन पर लिखा है, डिजिटल दौर में शॉक कंटेंट का खेल जिंदगियां बर्बाद कर रहा। हिंदी दिवस पर आज कई समाचार पत्रों ने विशेष आलेख प्रकाशित किए हैं। हिंदुस्तान ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां, निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल, निबिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, देश की धड़कन है हिंदी।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए ब्रिक्स नेताओं का आभार व्यक्त किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता लागू करेंगी। गणेश चतुर्थी का त्यौहार आज पूरे देश में श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। आज हिंदी दिवस भी मनाया जा रहा है। भारत ने ओमान तट पर व्यापारिक पोत पर हुए हमले की निंदा की और क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर रिकॉर्ड 8वीं बार महिला एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। The headlines. Prime Minister Narendra Modi thanks BRICS leaders for making Delhi summit productive and outcome-oriented. Union Home Minister Amit Shah says BJP-led NDA governments in 21 states will introduce uniform civil code before 2029. Festival of Ganesh Chaturthi being celebrated across the country today with great devotion. Hindi Divas being celebrated today. Raj Bhasha Awards for 2025-26 to be presented at Mumbai Conference. India condemns attack on merchant vessel off Oman coast. 13 Indian crew members rescued. Dheeraj Boma Devra scripts history by becoming first Indian male recurve archer to win gold medal at World Cup final in Mexico. And in cricket, India thrashed Sri Lanka by 72 runs to win record extending 8th Women's Asia Cup title. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has expressed gratitude to the leaders of all the BRICS member countries for making the Delhi summit of the grouping productive and outcome-oriented. A video reflecting key moments of the two-day summit was posted on the social media handles of the Prime Minister. In the video, a part of the Prime Minister's summit speech was shown where he said, through BRICS, India has advanced friendship, partnership and cooperation all across.
2: भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है। हमारा प्रयास रहा है कि ब्रिक्स कोऑपरेशन केवल सरकारों तक सीमित न रहे। हमारे एंटरप्रेन्योर्स, फार्मर्स, रिसर्चर्स, विमेन, यूथ और सामान्य नागरिक भी इसके सक्रिय भागीदार बने। हमने ब्रिक्स कनेक्ट के माध्यम से स्किल्स, एम्प्लॉयबिलिटी, विमेन इन वर्कफोर्स, सोशल सिक्योरिटी और कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ावा दिया है।
10: The leaders who attended the summit included Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, Iranian President Masoud Pezeshkian and Abu Dhabi's Crown Prince Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim, Vietnamese Prime Minister Lee Min Hung, Indonesian President Prabowo Subianto, Egypt's President Abdel Fattah al-Sisi, President of the Philippines Ferdinand R. Marcos Jr., Uganda's Vice President Jessica Alupo, besides others, also attended the summit. Union Home Minister Amit Shah has said that BJP-led NDA governments in 21 states will introduce Uniform Civil Code, UCC, before 2029. Speaking to reporters in Mumbai, Home Minister said, UCC has been introduced in several states and he is confident that it will be introduced in the 21 BJP NDA ruled states before 2029.
3: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड
11: वी इंट्रोड्यूस द यूनिफॉर्म सिविल कोड इन सेवरल स्टेट आई एम कॉन्फिडेंट दैट वी विल इंप्लीमेंट द यूसीसी इन ऑल 21 स्टेट्स गवर्न्ड बाय द बीजेपी लेड एनडीए बिफोर 2019 द भारतीय न्याय संहिता व्हिच हैज बीन क्रिएटेड हैज सर्व्ड टू गिव एन इंडियन फाउंडेशन टू द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन मेनी स्टेट्स द कन्विक्शन रेट हैज सीन अ 30% इंक्रीज इन जस्ट अ सिंगल ईयर अ सिस्टम इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड वेयर जस्टिस कैन बी डिलीवर्ड विद इन
3: और तीन साल में न्याय मिल जाए ऐसी एक प्रणाली खड़ी हो रही है।
10: मिस्टर शाह सेड ट्रिपल तलाक हैज बीन अबॉलिश्ड गिविंग मुस्लिम वुमेन इक्वल राइट्स। ही सेड द गवर्नमेंट हैज स्ट्रेंथन द कंट्रीज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम थ्रू द भारतीय न्याय संहिता एंड क्लेम दैट सेवरल स्टेट्स हैव रिकॉर्डेड अ 30% इंक्रीज इन द कन्विक्शन रेट इन अ सिंगल ईयर। The festival of Ganesh Chaturthi is being celebrated today across the country with great devotion. The day marks the birth of Lord Ganesh, who is a symbol of wisdom, prosperity and good fortune. Ganesh Chaturthi is being celebrated across Maharashtra. The 10-day festival will culminate on 25th of September on the occasion of Anant Chaturdashi. Maharashtra government has declared Ganesh Utsav as the state festival. More from our correspondent.
6: The spirit of Ganesh Chaturthi is filling Maharashtra as homes and neighborhoods welcome Ganpati Bappa amid devotional songs, aarti and chants of Ganpati Bappa Moria. Homes and public pandal are beautifully decorated while devotees are offering prayers and seeking blessings of Lord Ganesh, the remover of obstacles and the deity of wisdom and prosperity. Across Mumbai, Ganesh mandals are also organizing cultural and social programs adding to city's festive spirit. Union Minister Amit Shah is scheduled to visit the famous Lal Bagcha Raja today. Security arrangements have been strengthened in view of large gatherings. Railways and BEST have made special arrangements to cater to increased demand of passengers. Prarthana, Akashwani News, Mumbai. Ratna khachita phara tuja gauri kumara chanda
10: nachi poti kumkum keshara. Pune is fully prepared for the 10-day Ganesh Utsav, which begins today. Lokmanya Bal Gangadhar Tilak gave a wider public form to the festival in 1893. We have a report.
12: Ganpati Bappa Moria, Mangal Murthy Moria. The grand historic Ganesh Utsav in Pune began today after Lokmanya Bal Gangadhar Tilak gave wider public form to the festival in 1893. Pune's Ganesh Utsav became a symbol of faith, social unity and public awareness. The five main Ganpatis along with the famous Srimant Dagdushet Halwai Ganpati and several other Ganesh mandals with attract devotees with beautiful decorations, traditional dhol tasha performances and cultural programs. The city is expected to remain vibrant with devotion and enthusiasm throughout the 10 days festival. Large number of devotees from across India and abroad also visit Pune during Ganesh Utsav. In view of the expected large crowds, the police have made elaborate security arrangements including CCTV surveillance and traffic management. Madhav Jai Bhai, Akashwani Pune.
10: In Uttar Pradesh, festivities of Ganesh Utsav will start today across the state. Women will also celebrate Kajri Teej. More from our correspondent.
7: Preparations for Ganesh Chaturthi has started in state with small and large pandals being decorated at several places. A grand Ganesh Utsav is set to commence at Lucknow's Jhulelal Vatika on the banks of Gomti River. The pandal of the Utsav has been constructed by artisans from Kolkata, modeled after the Swaminarayan Temple in New Jersey, USA. An air-conditioned waterproof hall spanning approximately 13,000 square feet with a seating area of 6,000 square feet has been constructed where devotees can sit and write letters to Gajanan. Meanwhile, the Kajri Teej festival is being celebrated today in eastern part of Uttar Pradesh. On this day, married women will worship Lord Shiva and Goddess Parvati and observe a fast without water. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
10: President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi have extended greetings to the people on the occasion of Ganesh Chaturthi. This is Akashwani giving you the news.
13: Stay updated, stay ahead. Follow us on X at AIR News Alerts and on Instagram at AIR News Alerts.
10: Welcome back to Morning News on Akashwani. Hindi Divas is being celebrated across the country today. It was on this day in 1949 that the Constituent Assembly adopted Hindi, written in Devanagari script, as the official language of the country. Today, Hindi is one of the widely spoken languages in the world and the first language of more than 52 crore people. Union Home Minister Amit Shah will attend the Hindi Divas 2026 program and the 6th All India Rajbhasha Sammelan official language conference in Navi Mumbai today. More from our correspondent.
14: The two-day All India Official Language Conference is being organized in Navi Mumbai, Maharashtra by the Department of Official Language under the Ministry of Home Affairs. The conference aims to highlight the relationship between Hindi and Maharashtra's rich linguistic, cultural and literary traditions. In the inaugural session today, Union Home Minister Amit Shah will present the Rajbhasha Gaurav and Rajbhasha Kirti Awards for 2025-26. A key attraction of this year's conference will be a discussion centered on the national song Vande Mataram. With Prarthana's report from Mumbai, Komudi Parikh, Akashwani News.
10: India has condemned the attack on the commercial vessel MT El Gaya off the coast of Oman yesterday. In a statement, the Indian Embassy in Oman said 13 Indian crew members have been rescued so far, while search and rescue operations are continuing for one missing Indian national. The embassy said it is closely monitoring the situation and coordinating with Omani authorities in the ongoing search and rescue operation. It also thanked the Omani authorities for their support in rescuing the Indian nationals. India reiterated its call for the immediate de-escalation of tensions and for dialogue and diplomacy to restore peace in the region. On to sports. Top-ranked India's Dheeraj Bommadevra scripted history by becoming the first Indian male recurve archer to win gold at the World Cup final, edging Japan's Nakanishi Jr. in a thrilling shoot-off at Centio in Mexico. The 25-year-old world number 10 army man produced a dominant run, powering through the quarterfinals and semifinals before overcoming world number 20 Nakanishi 6-5 in a hard-fought five-setter. He also ended a 16-year wait for an Indian male recurve archer to win a medal in this prestigious event. India produced a commanding all-round performance to defeat Sri Lanka by 72 runs in the Women's Asia Cup 2026 final in Dubai last night, securing a record-extending 8th Asia Cup title. The victory also helped India avenge their defeat to Sri Lanka in the 2024 final. It was India's 6th win over Sri Lanka in an Asia Cup final across the ODI and T20 formats, including the 2004 edition, when India defeated Sri Lanka 5-0 in the two-team tournament. India first posted a formidable 183 for 5 after opener Shefali Verma and Smriti Mandhana produced a record-breaking 129-run partnership. The bowlers then completed the job by dismissing Sri Lanka for 111 in 19.4 overs, with Sri Charani taking 4 wickets and Deepti Sharma claiming 3. Shefali Verma was declared player of the match. President Draupadi Murmu has congratulated all the members of Team India on winning Women's T20 Asia Cup Championship 2026. Germany's Alexander Zverev has won men's singles title of US Open tennis, beating American Ben Shelton 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 in New York last night. This marks Alexander Zverev's second major title of 2026 following his French Open victory in June. Ben Shelton's loss keeps the 23-year-old Grand Slam title drought alive for American men, though he became the first black American man to make it to the US Open final since Arthur Ashe in 1972. In our bilingual live phone-in program Public Speak tonight at 9:30 p.m., we will bring an insightful discussion on nutrition and early stimulation for childhood development with Dr. Richa Pandey, nutrition specialist, UNICEF India, and Dr. Surendra Singh Bisht, head of pediatrics and neonatology department, Swami Dayanand Hospital, New Delhi. During the program, listeners can ask questions on the subject. To participate, simply dial the telephone numbers 011-231-0481 and 011-231-4444 from 9:30 p.m. onwards tonight. Alternatively, you can also send your queries via WhatsApp to the number 928-909-4044 or post your questions on X with the hashtag AskEIR. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
15: Thank you, Anuja. All the dailies have widely covered Prime Minister Modi seeking wider Global South role for BRICS as he holds key 15 bilateral meetings and numerous pull-aside meetings on BRICS sidelines. The Statesman headline says, two big takeaways for India, joint declaration and successful Modi-Xi meeting. Modi flags weaponization of tech critical minerals, headlines Hindustan Times. Delhi declaration adopted by BRICS members backs sovereign Palestinian state, cites the Economic Times. As Modi pitches for startup fund and incubator network, Russia proposes new insurance mechanism and grain market, writes Financial Express. Quoting the Union Home Minister, the Indian Express states 21 NDA rule states to introduce UCC by 2029. And finally, Indian hockey extends Asian dominance with the men's and women's teams defending their twin junior titles and securing qualification for the Junior World Cup, notes the Tribune. And with that, it's back to you, Anuja.
10: Thank you, Shagun. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi thanks BRICS leaders for making Delhi summit productive and outcome-oriented. Union Home Minister Amit Shah says BJP-led NDA governments in 21 states will introduce uniform civil code before 2029. festival of Ganesh Chaturthi being celebrated across the country today with great devotion. Hindi Divas being celebrated today, Rajbhasha Awards for 2025-26 to be presented at Mumbai Conference. India condemns attack on merchant vessel off Oman coast, 13 Indian crew members rescued. Dheeraj Bumma Devra scripts history by becoming first Indian male recurve archer to win gold medal at World Cup final in Mexico. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
16: Akashvani Ayushvani Prayojita Karikrama. Ee Karikramada Prayojakaru Rashtriya Ayush Abhiyana Ayush Ilake Karnataka Sarkara. Vandilaga Mattu Dasavala Sasyagala Aushadhiya Gunagalannu Tilisuttare Dr. Gayatri Vaidyadhikarigalu ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ನಾರ್ವೆ ಗ್ರಾಮ ಕೊಪ್ಪ ತಾಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೇಳಿ ಆಯುಷ್ ವಾಣಿ
0: ಕೇಳುಗರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂದೆಲಗ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಗಿಡ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ ಅಲ್ವೇ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವ ಅಂಶ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಇದನ್ನು ಸರಸ್ವತಿ ಸೊಪ್ಪು ಎಂದು ಹಾಗೂ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಾವಿನಂತೆ ಹಬ್ಬುತ್ತಾ ಬೆಳೆಯುವ ಕಾರಣ ಉರಗದ ಸೊಪ್ಪು ಎಂದಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಈ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಿಸುವ ಅಂಶವಿದೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಬರಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಕೊಟ್ಟರೆ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಪಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೆರಳಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದರೆ ಒಂದೆಲಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಾ ಬಂದರೆ ಮರೆಗುಳಿತನ ಅಲ್ಝಿಮರ್ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸೋನಿಸಂ ನಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಬಹುದು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಡವಾಗಿ ಮಾತು ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಂತಹವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಿಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಒಂದೆಲಗದ ತಂಬುಳಿ ಹಾಗೂ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನ ಇಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದೆಲಗದ ತಂಬುಳಿ ಒಂದು ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ಒಂದೆಲಗದ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಬೇರು ಸಮೇತ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಬೇರಿನಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷ ಔಷಧಿಯ ಗುಣ ಇರುವ ಕಾರಣ ಬೇರಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದೇ ಸೂಕ್ತ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು 8-10 ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ತೆಂಗಿನ ತುರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹುರಿದ ಒಂದೆಲಗದ ಸೊಪ್ಪಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ರುಬ್ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಂತರ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹುರಿದು ಜೀರಿಗೆ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸು ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ರುಬ್ಬಿದ ಒಂದೆಲಗದ ಸೊಪ್ಪಿನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ 1-2 ಲೋಟದಷ್ಟು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಗೂ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿಯ ತಂಬುಳಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಒಂದೆಲಗದ ಚಟ್ನಿ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ತಾಜಾ ಅಥವಾ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿದ ಒಂದೆಲಗದ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಧನಿಯಾ ಕಾಳು ಹಾಗೂ ಜೀರಿಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹುರಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ರುಚಿಗೆ ಅನುಸಾರ ಬೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೂ 1-2 ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ತೆಂಗಿನ ತುರಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದೆಲಗದ ಸೊಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಹದವಾಗಿ ರುಬ್ಬಿದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿಯ ರುಚಿಕರವಾದ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಅನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ರೊಟ್ಟಿ ಚಪಾತಿಯೊಂದಿಗೂ ಸೇವಿಸಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದು ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂದ್ರೆ ದಾಸವಾಳದ ಎಲೆ ಇದನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಜಪಾಕುಸುಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಅಲಂಕಾರಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ದಾಸವಾಳ ಕೂದನ್ನು ಸೊಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಅಂಶವಿದೆ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾಸಿಕ ಋತುಸ್ರಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ದಾಸವಾಳ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮನೆ ಮದ್ದು ದಾಸವಾಳದ ಹೂವನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಪೂರಾ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಅಂಶ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ದಾಸವಾಳ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಂಪು ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಖುರ ಏಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ದಾಸವಾಳ ಸೇವನೆ ಉತ್ತಮ ಮನೆ ಮದ್ದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಂದ ದಾಸವಾಳದಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಗೂ ಆಂಟಿಫಂಗಲ್ ಅಂಶಗಳಿವೆ ಎಂದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ದೇಹ ಪೋಷಣೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ದಾಸವಾಳದ ಚಿಗುರು ಅಥವಾ ದಾಸವಾಳದ ಹೂವಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ದಾಸವಾಳದ ಚಿಗುರು ಎಲೆಯನ್ನು ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹೀಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಚಿಗುರನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ 8-10 ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕದಾದ 1/2 ಲೋಟದಷ್ಟು ತೆಂಗಿನ ತುರಿಯನ್ನು ಮಿಶ್ರ ಮಾಡಿ ರುಬ್ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಂತರ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಜೀರಿಗೆಯ ಒಗ್ಗರಣೆ ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡು ರುಬ್ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ದಾಸವಾಳ ಸೊಪ್ಪಿನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನ ಸೇರಿಸಬೇಕು ನಂತರ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ಅನುಸಾರ ಉಪ್ಪನ್ನು ಬೆರೆಸಿದರೆ ದಾಸವಾಳ ಚಿಗುರಿನ ತಂಬುಳಿ ಸೇವಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ದಾಸವಾಳದ ಹೂವಿನ ತಂಬುಳಿ ಎಲ್ಲಾ ಬಣ್ಣದ ದಾಸವಾಳದಲ್ಲೂ ಔಷಧೀಯ ಗುಣ ಇರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥವಾಗಿ ಬಿಳಿ ದಾಸವಾಳವನ್ನ ಬಳಸುವುದು ಸೂಕ್ತ ಬಿಳಿ ದಾಸವಾಳವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಹಾಗೂ ತೆಂಗಿನ ತುರಿಯೊಂದಿಗೆ ರುಬ್ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಜೀರಿಗೆ ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ದಾಸವಾಳದ ಹೂವಿನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನ ಸೇರಿಸಿ 2-3 ಲೋಟದಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪನ್ನು ಬೆರೆಸಿದರೆ ರುಚಿಕರವಾದ ದಾಸವಾಳದ ಹೂವಿನ ತಂಬುಳಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ತಂಪು ಉಷ್ಣ ಪ್ರಕೃತಿಯವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮನೆಮದ್ದು ರಕ್ತವನ್ನ ಶುದ್ಧಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಾತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೀಲು ನೋವುಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಉತ್ತಮ ಮನೆಮದ್ದು. ನಮಸ್ಕಾರ.
16: ಆಯುಷ್ವಾಣಿ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇಳಿದಿರಿ. ಒಂದೆಲಗ ಮತ್ತು ದಾಸವಾಳ ಸಸ್ಯಗಳ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಾಯತ್ರಿ. ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ನಾರ್ವೆ ಗ್ರಾಮ ಕೊಪ್ಪ ತಾಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯುಷ್ ಅಭಿಯಾನ, ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರಸಾರ ಕೇಂದ್ರದ ಕೊಡುಗೆ.
17: ಇದು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು.
0: ಆಕಾಶವಾಣಿ ರಾಯಚೂರು ಎಫ್ಎಂ ಕೇಂದ್ರ. ಸಮಯ 8:35.
16: ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಸಂದೇಶ.
18: ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ. ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ಗಣೇಶ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ಅಂತ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಪಿಒಪಿ ಮತ್ತೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಲೇಪಿತ ಗಣೇಶ ಗೌರಿ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತೆ. ವಿನಾಯಕನ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಗಣೇಶಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿ ಅಂತ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ.
16: ಪ್ರಕಟಣೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ.
0: ವಿವಿಧ ಕಲಾವಿದರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ವಚನ ಗಾಯನ.
19: ತನುವೆಂಬ ಹುತ್ತದಲ್ಲಿ ಮನವೆಂಬ ಸರ್ಪ. ವಚನಕಾರರು ಹಡಪದಪ್ಪಣ್ಣನ ಪುಣ್ಯಸ್ತ್ರೀ ಲಿಂಗಮ್ಮ. ರಾಗ ಮಾರುಬಿಹಾಳ್, ತಾಳ ಧುಮಾಳಿ. ಗಾಯಕರು ಜ್ಯೋತಿ ಗಣೇಶ್. ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ವಾಗೀಶ ಭಟ್.